मंजनाए सी मंत्र से मन मंजन श्री दीप निरंजन सबद जन प्रभु दीप निरंजन सब दुख

न शबद जनसीमा होवे मन मंजन ऐसी मंत्र पे मन मंजन श्री दीप निरंजन सब दुख बन प्रभु दीप निरंजन सब दुख

जन सब दुख बन प्रभु दीप निरंजन सब दुख। श्री दीप नारायण भगवान की, देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।

0: नरेम भगवान की जय। श्री विश्वगुंदेश्वर परम स्वामी मश्वंज गुरुदेव
1: की जय। सत्य सनातन धर्म की जय।
0: सिद्धि नरेम भगवान की जय। श्री विश्वगुंदेश्वर परम स्वामी मश्वंज गुरुदेव की जय।

जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेवा की जय। Anybody wants to sing?

श्री आगपुरी समाधि की जय। देवेश्वर महादेव की जय। श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री स्वामी माता कृष्ण भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडल स्वामी महेश्वर जी गुरुदेव की जय।

ओम बोले सिद्धिप नारायण भगवान की जय। विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

0: दीप नारायण भगवान की जय। ओम नमो ओम ओम इज द इटर्नल
1: ओम ये नेकोनेचने
0: ओम कार बिंदु संयुक्तम नित्य धायन्ति योगी नम ईच एंड एवरी योगी आल्सो दे मेक प्रणाम टू द ओम ओम कार बिंदु उसके ऊपर में बिंदु है
1: तो यस बिंदु अब शिष्य योगी से कलानी प्रेत ओम
0: वी मेक ए ओम
1: कृष्णमय ओम
0: मात्रा एंड बिंदु
1: मात्रा अब बिंदु
0: सो दिस इज आवर गुरुदेव ऑल भगवान ऑल गॉड यू सेड आमेन व्हाट इज आमेन

गगनसदृशं तस्मस्याधिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वधिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमाम्यम् ॐ शांति शांति शांति। अलकपुरी जी महादेव की, देवादि देव देवेश्वर महादेव की, पूज्य भगवान दीप नारायण महाप्रभु की, हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन भारत माता की। ब्लेसिड सेल्फ स्पिरिचुअल सीकर्स भक्तास डियर वंस राउंड द वर्ल्ड दिस मैसेज इज कमिंग फ्रॉम होली लैंड भारत जाडन राजस्थान पाली फ्रॉम द गुरुकुल। गुरुकुल मीन्स दैट एजुकेशन सेंटर वेयर द मास्टर द गुरुदेव इज गिविंग द नॉलेज। द स्कूल्स द कॉलेज एजुकेशन सेंटर्स ऑल बिगेन विद द ऋषिज। There was no schools in the whole world. It was only taught by the great rishis. And the first university in the world, where was it? Pehli university kahan thi sansar mein? Takshila. तक्षशिला कौन से देश में था? भारत में। फर्स्ट यूनिवर्सिटी वॉज इन इंडिया तक्षशिला। मैनी मैनी थिंग्स सो ओके लेट्स गो फर्दर। इन अवर गुरुकुल ओम श्री विश्वदीप गुरुकुल वेयर द students are studying from the nursery school, primary school, middle school, high school and college. In this area of Rajasthan, we have one project and many of you know, it's called Gyan Putra. हम अवर गुरुकुल एडॉप्ट्स द स्टूडेंट्स द चिल्ड्रन एज ए मानस पुत्र। एक तो मानस पुत्र होता है जिसको हम हमारी पुत्र के समान

आदर करते हैं, प्यार करते हैं, समझते हैं। और वो ही चाहे आप मनमानस पुत्र कहो या ज्ञान पुत्र, क्योंकि फादर का, बाप का, माँ बाप का फर्ज होता है कि संतान को शिक्षा दें, बिकॉज द पेरेंट्स आर दे हु गिव्स द एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन। नाउ अकॉर्डिंग टू द इंडियन एजुकेशन द टाइम द स्कूल बिगिंस फ्रॉम 1st of July। So now our students are coming. But dear ones, you can see many of our Gyanputra, our students in our hostel still coming, and you see them in the Pitambar dress, Pitambar like gold. And Bhagavan Krishna used to have Pitambar. And you see, Pitambar is a color of the flame of the fire. So, the Vidyarthi, they are studying. They should not do any wrong things. They are sitting in the fire in this dress. And this dress will not let come in your body and in your mind negative things. So this is a very ancient uniform for the brahmachari, yani vidyarthi, yani student. They have nothing to do except study. Those who studies, their fruits of their study will come in the future. And the future you will be so happy that you had an education which is a cultural traditions, ethics, morals and spiritual education. Indian culture, Indian tradition, Indian education from the ancient time was leading the world into the peace and divine. In the Indian education system, there is no aggressivities. They were not aggressive. So, in our Gurukul, we have a different education, not this modern education where they are only want to work and earn money, earn money, earn money. It is very funny to earn that only money. So, hame to gyanarjan karna hai, paise ki baat nahi karni hai, hum padhenge, paise kamayenge. Ye bhav nahi hona chahiye vidyarthiyon ke andar, kyunki wo paise jo hai, जो तुम सोचते हो वो तुम्हारी विद्या के अंदर है, और वो पैसे इतने तुम्हारे मस्तिष्क रूपी बैंक है, ये इस बैंक के अंदर में जमा हो जाता है, और हाथ में से तो रुपये चोरी करके ले जाए, घर में रुपये पड़े चोरी करके ले जाए, लेकिन जो मस्तिष्क के अंदर ज्ञान रूपी धन जो है वो कोई नहीं ले जा सकता है। इसीलिए विद्यार्थी का एक ही संकल्प होता है कि मैं पढ़ाई करूंगा, मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा, बड़ा होकर के मेरे माता पिता, मेरी समाज और मेरा गांव, मेरा देश और सब पूरे विश्व को शांति का संदेश दूंगा। बस तो लक्ष्मी पैसे तो तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगा। वो कहना नहीं है कि मेरे को इतना पैसा चाहिए। अगर तुम्हारा अध्ययन इतना अच्छा है तो ये 5 लाख की जगह आपको 15

0: लाख रुपए देंगे कि लेकिन हमारी कंपनी में काम करो। ले ओ, एक महीना रहा 15 लाख। अपाओ तो थैला भी उठी जाए कोनी, 15 लाख रुपया उठा सकते हैं हम? अरे बहुत। तो वो मस्तिष्क में नहीं उठता है 15 करोड़। अब इतो बाहर है कि तुम्हारे सिर पे उठा नहीं सकते हो, लेकिन वो 500 करोड़ तुम्हारे मस्तिष्क की रूपी बैंक के अंदर में वो वहां हो जाएगा जमा, और चाहिएगा जितना ही लेते जाओ। और वो पैसे जो है जो हमारे मस्तिष्क में है वो कभी भी खत्म नहीं होता है। जैसे कि कुएं के अंदर पानी का स्रोत है, कितना ही पानी निकालो वो तो पानी अच्छा ताजा पानी आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। तो ज्ञान जिसने सीखा है गुरुकुल के अंदर भारत की संस्कृति के अनुसार और भारत की विद्या ऋषि मुनियों के अनुसार हम करेंगे तो मालो माल है। सो द एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द इंडियन कल्चर, द लैंग्वेज, द फर्स्ट लैंग्वेज व्हाट वी कॉल इज संस्कृति, संस्कृत। संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस अराउंड द वर्ल्ड, मे बी 2-3 नॉट। एवरीवेयर देयर इज द वर्ड्स ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज इन मैनी मैनी मैनी मैनी कंट्रीज। एंड ऑल्सो द कल्चर गोज फ्रॉम द भारत। All these many countries like Europe and there, they were all under the glaciers. They were living here near the Himalaya and near this Indo Valley. Of course, Australia was different and there, but in Australia is also where the South Indians, which we call the Aborigines. So, Aborigines ke andar वो उनके अंदर वो मिलता है जैन्स कि वो भारत का है, साउथ इंडिया का है। तो कहा है कि सबसे पहला मानव की उत्पत्ति हुई है तिब्बत में, और तिब्बत का अर्थ वो है कि जो जहां पर वेयर देयर इज माउंट कैलाश, और कैलाश के अंदर कौन सा मनुष्य पहला पैदा हुआ? स्वयंभू शिव। आगे वापस वहीं के नहीं, इसलिए हमारा देश इतना है कि उसको कोई छोड़ने की इच्छा नहीं करते हैं। सब कुछ है अपने देश के अंदर में, और ये देश जो है इनका एक एक कण कण मिट्टी के अंदर में देवी देवताओं का वास है। चंदन है मेरे देश की मिट्टी, तपोभूमि हर ग्राम है, है? हर बाला है देवी की प्रतिमा, और बच्चा बच्चा राम है। फिर क्या काम है, वहां तो आराम है, वहां आराम नहीं है। सो मैं अब आई वॉन्टेड टू टेल यू दैट इन अवर गुरुकुल अवर ज्ञानपुत्र इज हियर, दे आर कमिंग and we are welcoming them, and you are most welcome to help for the education. Thank you very much. And now I would like to give the words to our Mahamandaleshwar Sri Gyaneshwar Puri Ji Maharaj. Gyaneshwar Puri, Gyanesh, Nami Gyan aur Ishwar, do mil jaye to kya chahiye, और ज्ञानी और ईश्वर मिल जाए तो भी वो डबके क्यों है। तो ईश्वर और ज्ञान दोनों का मिलन होता है तब आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार ही हो गया, समझिए। तो नाउ इन इंग्लिश एंड इन हिंदी एंड इन संस्कृत इन एंड इन क्रोएशियन, चार लैंग्वेज एट वंस स्पीक्स, वही मां मंडलेश्वर बन सकता है बेटा। फोर लैंग्वेज, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, क्रोएशियन एंड मे बी समवन मोर। So, हमारे ज्ञान पुत्रों को, he will introduce our ज्ञान पुत्रास and our हमारा ब्रह्मचारी of this आश्रम. So, ज्ञानेश्वर जी, आप बच्चों को give the children that kind of suggestion and instructions that they get inspiration to study properly. बैठो. सदीप नारायण भगवान की
1: जय. देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की जय. हिंदू धर्म सम्राट स्मर कृष्ण भगवान की जय. विश्व गुरु महामलेश्वर परम समेश्वर जी सत्य गुरु देव की जय. ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम शांति शांति शांति. As you all know, our Sri Vishwadeep Gurukul is a school for which for the last, let's say, 20 years is educating the children. Some of them you can see here. it was a Swamiji's project which our dear Vishwaguruji started long back, because education in a country which is so huge population like India, it's very tricky. The system of Gurukuls, which was used from the ancient times of rishis, were still active in the beginning of 19th century, but with the coming of British to consolidate their power, they slowly dismantled this Gurukul system and started the English-based system. And but also not for everybody, only for selected people and so on. So the story, what I'm telling you, is from the end of 19th century. And the first school and actually university was actually founded in 1885, so which is quite late in Bombay and so on. So this kind of school, which has very limited approach, left India quite uneducated, and there were many schools, many children, many villages without any school or any kind of education. We know in Europe we have different system of numbers. Croatia has 5 million people altogether, which is completely, when we put in Indian terms, this is approximately one city. So India has at the moment 1.5 billion people. We in West cannot actually comprehend that it's a really huge number. So it means...
0: And Croatia have 50 lakh. Sorry.
1: So we cannot comprehend these numbers that in... one village like Jadan, they can be at least 5 to 10,000 students. In the area of Marwar Junction, where our ashram is situated, there can be at least 50,000-60,000, if not more, children who are studying. So now, the problem is how to give education to all these children, because education takes money. Education requires money, education requires books, and so on. So, there are many, of course, the government is doing their best, and there are many NGOs, there are many societies which are helping, and one of societies which Vishwaguruji formed is under the name of Gyanputra, which basically means the sons of the knowledge. So these people, these children, and the families from whom these children belong, they got free education, free books, free many things. Now, it's not a question of only education, because nowadays in our Western-based education, because of so much subjects we have to study, is actually the moral and thinking that is actually removed. Because to teach morality, it's actually the subject which is the base of all education, because first we get education from our parents. But now the parents go to work when you are 3-4 months old and you go to some kindergarten. So in this Gurukul, Swamiji is trying to bring back this old tradition, this old Indian tradition of rishis, in which the morality should be included in our, in education. But from the beginning, not from the end. Not when you go to the university that you start to learn about what is the morality and different ways and so on, but from the beginning. Because now in our science project, let's say, they can teach you how to make TNT, they can teach you how to make the bomb, gun, or whatever. But they will not teach you why to use it and how to use it. Not how to. They will teach you how to use it, but not why not. So this is the basic problem which now we can see in all around the world with all the many all the things terrible that are happening. So because the people have the knowledge how to use the things in a bad way, but they don't have the mentality to decide that this is good or not good. So this thing Swamiji is trying to achieve in this Gurukul, to have according, because the modern education is modern education, we have to have it to be competitive in this world, but still on top of that, Gurudev is trying to put one more layer, which was actually before, even in our country was there, but then now we have these changes in education. But everything is going for the globalization, how the people can move from one place to another, so the children are actually educated in very short spectrum. Here I had the opportunity to study with one teacher who was, she was brought up in a Gurukul system. And in a Gurukul, they have studied all the Bhagavad Gitas and Ramayana and Vedas and this and that. So they studied everything. So actually, I know, I have first-hand experience that I know that what they were studying, what they were learning in the Gurukul. And our Pushpaji from Jaipur Ashram, from Jaipur Yogsadhana Ashram, which you met many times on webcast, she's also studied in Gurukul, which is a completely different system of study than nowadays, which is very commercialized. So these kind of studies we are trying to give to the children here, and these children will then hopefully try to improve the status of these villages which is around us. Because the base of the India is in the villages. More than 67% of all population lives in villages. Of course, this is changing, but population, as you know, in India is huge, as I told in the beginning. So we are, Swamiji, trying very hard. It's, of course, very difficult because everybody wants to have computers, everybody wants to study, to have experiments with the chemistry or physics and so on. So this is quite, of course, it's a costly matter to pay the teachers. If you have good teachers, they require more money. If you have good equipment, this requires money and so on. So that's why we are thankful to all the supporters, all the donators who gave the money for this project of Gyanputra. Ab aapke paas ab school mein jaate hai, ab school ka samay ho gaya. चालू भी हो गए अब मैंने आपके सामने बैठ रहे तो कॉन्सेंट्रेशन तो है ही नहीं, एक जगह में बैठ नहीं सकते, नींद तो आती रहती है, अभी तो 9 बज गए तो शायद जाने की समय है या स्टडी का समय है। यहाँ का प्रॉब्लम है जनरल पूरी दुनिया में यही प्रॉब्लम है स्टडी में कि सब लोग जनरली बच्चे सोच रहे हैं कि स्टडी का क्या मतलब है, एग्जाम तो आएगा दिसंबर में, जब एग्जाम आएगा मार्च में एग्जाम आएगा अप्रैल में, अभी क्या स्टडी करना है। तो आप ऐसे कीजिए, 365 दिन है, आप आज 6 महीना के लिए खा लेना, एक दिन में 4 रोटी आप लेते, ठीक है, सुबह 2 शाम को 2, ठीक है, मान के चलो 5 रहते, 6 लेते, तो 6 महीना में कितना दिन होगा, 180 दिन, 180 दिन में 5 रोटी एक दिन का हो गया कितना, 900 रोटी। तो ठीक है, आज सुबह हम बना देंगे भंडारा, 900 रोटी सबको खानी है, फिर 6 महीने आप फ्री हो गए खाने से, संभव है? इतनी मामूली चीज है, अब क्या है, 900 रोटी खा लीजिए, क्या है, कोई खास नहीं है, 6 महीना का आपकी भूख नहीं लगेगी, ऐसे नहीं चलता है ना। तो अगर ऐसे नहीं चाहते, आप क्या सोच रहे कि एग्जाम के एक दिन पहले आप पूरे 365 दिन की पढ़ाई कर सकते हैं, पूरी 6 महीना की पढ़ाई कर सकते हैं एक रात में, वो एक रात भी नहीं, 2 घंटे में। अब यहां से रवाना होकर के 9 बजे बैठेंगे पढ़ाई करने में, 11 बजे समाप्त, सुबह एग्जाम दे देंगे और एकदम 100% मार्क्स आएंगे, संभव है या नहीं? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो पढ़ना होता है रोज डेली, तो पढ़ाई टुकड़ों में होता है, जैसे खाना टुकड़ों में खाता है, हर दिन 5 रोटी खा सकते, कोई टेंशन नहीं, 10 रोटी भी खा सकते हैं, लेकिन 900 रोटी खा नहीं सकते। तो वैसे ही रोज 900 पेज थोड़ी पढ़ सकते। हमारे पास जयपुर में भी बच्चे आते ओपन स्टडी करते, 3 दिन में 800 पेज की किताब कैसे पढ़ेंगे? इसलिए जो स्टडी कर रहे हैं, अगर डेली हर दिन अगर आप मान के चलो 1 घंटा पढ़ाई होगा, तो 6 महीना कितना हो गया घंटा, 180 तो हो गया, नहीं हुआ तो 180 घंटा आप एक दिन में कैसे जमा दोगे? तो इसलिए जो पढ़ाई करनी है वो टुकड़ों में करते रहना, अगर डेली 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करते, 1 घंटा कोई चमत्कारी कारण से 2 घंटा पढ़ेंगे, पता नहीं क्या होगा कि अब 3 घंटा भी पढ़ सकते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। तो आपकी मार्क्स जो आएंगे, आपकी कोई ट्यूशन व्यूशन की जरूरत नहीं होगी, आपकी जो IAS IPS बनना है सब बन सकते हैं, लेकिन पढ़ाई अगर ऐसे टुकड़ों में करते रहेंगे, अगर एक साथ में कोशिश करें तो क्या होगा, असंभव। इसलिए आपकी यहां आश्रम में रहते, यहां कोई घर की टेंशन है ही नहीं कि कोई माँ बाप कोई काम बताते नहीं, तो आपका क्या काम होगा, पढ़ाई का। इसलिए माता पिता ने आपको यहां भेजा पढ़ाई करने के लिए, और आप यहां क्या करते, मजे ले रहे, सोते रहते, मोबाइल में मूवी देखते, यूट्यूब फेसबुक सब कुछ होता है ना, क्यों? जब पढ़ने का टाइम है तो पढ़ो, जब तक हम हमारे गुरुजी आ है तब तक स्कूल चलेगा, और गुरुजी को कैसे खुश कर सकते, कम से कम कोई तो मार्क्स आए, अगर मार्क्स आएंगे तो कौन, हमारे गुरुदेव भी खुश होंगे और कहा माता पिता खुश नहीं होंगे, अरे मेरा बेटा 95% आ गया, अभी है कोई यहाँ 95% के, 100% के, 80%?

Good. Thank you. Thank you, and me honyo. Thank you. And you see the all Vidyarthis and the life throughout the whole world. Right? Now, only the our Gurukul ke bachche jo hai turn to the camera side. Muh dekho, dusre log nahi. All the Vidyarthi turn to the. Don't go close to the chela nahi dikhega beta. Tu idhar se khada ho ja. बस बेटा यहीं खड़े होके दे या नजदीक आ जाए बस ओके वी विल सी इफ व्हेन इज देवेश्वर महादेव की जय अलकपुरी जी महादेव की जय हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की सत्य सनातन धर्म की भारत माता की ओम शांति शांति शांति ओम त्र्यंबकम यजामहे।

ओम शांति शांति शांति। बस अब मेरी तरफ झुक आज देख लो, इस कैमरा में देखो, दिख रहे हो तुम लोग? तुम दिख रहे हो? पीछे ही खड़े हो, बैठ जाओ। बस थैंक यू। सो टुमारो वी विल अगेन हैव द वेबकास्ट ऑन अदर सब्जेक्ट, मोस्ट प्रोबेबली already in the school when we have the prayers and all the students there. Now is the time for prasad. Dikh rahe hain sabhi ki nahi dikh rahe? Yes, time for prasad. Theek hai, to yahan apne yahan har mahine mein ek do baar aur main aaunga tab tumhare ko pure sansar ki yatra kara denge swami ji television ke zariye.

सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरो ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः।

0: ki jai.
1: Devadidev Deveshwar Mahadeva
0: ki jai.
1: Shradeep Narayan Bhagavan
0: ki jai.
1: Hindu Dharam Samrat Paramahan Swami Sri Madhavanand Puriji Sadgurudev Bhagavan
0: ki jai.
1: Vishwaguru Mahamandaleshwar Paramahan Swami Sri Maheshwaranand Puriji Gurudev
0: ki jai.
1: Aaj ki ananda ki
0: jai.
1: सब संत श्रमण महात्माओं
0: की जय.
1: माता पिता गुरुदेव
0: की जय.
1: धर्म की
0: जय.
1: धर्म की
0: जय.
1: अधर्म का
0: नाश.
1: अधर्म का
0: नाश.
1: प्राणियों में
0: सद्भावना.
1: प्राणियों में
0: सद्भावना.
1: विश्व का
0: कल्याण.
1: विश्व का
0: कल्याण.
1: गौ हत्या बंद हो. गौ हत्या गौ माता की
0: जय.
1: गौ माता की
0: जय.
1: सत्य सनातन धर्म
0: की जय.
1: सत्य सनातन धर्म
0: की जय.
1: आप सब भक्तों की
0: जय.
1: हरण वफ पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो.

कबन प्रभुदीप निरंजन शबदो। श्री दीप नारायण भगवान की, देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।

0: ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
1: विश्वगुरु परमांशी स्वामी महेश्वरानंद गुरुदेव की जय।
0: हरि ओम।

दीप नारायण भगवान की, देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की, अलकपुरी जी महादेव की। ओम शांति शांति।